0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Melbourne Museum ki nayi bhavya pradarshini, Rome, Empire, Power, People, ab khul chuki hai. Australia mein pehle kabhi nahi dekhe gaye 180 adbhut aitihasik avsheshon ke saath. जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्ति और मोज़ेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ek prarambhik balyavastha shikshak ya prashikshak ke roop mein aap bachchon ke jeevan ko aakar de sakte hain. आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारें. अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं. विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत.
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM.
2: सही सेवाएं उपलब्ध हैं, सही जानकारी भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा समुदाय हमेशा उन्हें ढूंढ नहीं पाता. डाइवर्सिबिलिटीज इसे बदल रहा है. एक निःशुल्क बहुसांस्कृतिक प्लेटफॉर्म जहां आप अपनी भाषा में सेवाएं, जानकारी, कार्यक्रम और समुदाय से जुड़ने के अवसर पा सकते हैं. इस महीने निःशुल्क जुड़े और $50 का वेस्टफील्ड वाउचर जीतने का मौका पाएं. डाइवर्सिबिलिटीज हम सभी के लिए. 1300-013-727 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए 3ZZZ.com.au पर जाएं.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी. कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा. 1992 से चला आ रहा 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों, दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है. अधिक जानकारी के लिए www.3zzzindian.org. आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से.

0: कंपैरिजन में काफी कुछ विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं।
1: और ये गैप जिसे जनरेशन गैप से हम जानते हैं, ये विजिबल है या इनविजिबल?
2: उन बच्चों को मेहनत करनी ही नहीं पड़ी तो अब उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं है। लेकिन ये जो जेन जी है, जेन अल्फा है, उनकी तकलीफें हमसे अलग होने वाली हैं। उनकी तकलीफें ज्यादातर रिलेशनशिप्स में होने वाली हैं, बोर्डम से होने वाली है, कॉन्स्टेंट चेंज उनको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। हमने अगर एक करियर चुना था तो हमारा वो एक करियर

0: कश्मकश जनरेशन गैप की, जेन एक्स और जेन जी अल्फा की।
1: पल पल जुड़ती जाए कड़ी।
0: अभी वीकेंड में एक शाम कुछ दोस्तों के साथ यानी कपल्स हम लोग मिल बैठ गपशप, खाना पीना यही सब चल रहा था। हम लोग करीब उम्र के हिसाब से प्लस माइनस एक ही कैटेगरी में थे, 60 अराउंड, यू नो। तो एक मुद्दा काफी चर्चा में था मीनू जी, वो था जेनरेशन गैप।
2: हाँ, सभी अलग अलग पहलू पे पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, सभी अपनी जगह पर सही थे, कोई गलत या सही ऐसा कुछ नहीं था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी में बदलाव, रहन सहन, खान पान का बदलाव समझ में आता है, पर आज की जनरेशन की सोच वर्सेस वो क्या सोचते हैं, कहते हैं, जेन एक्स या बूमर्स के कंपैरिजन में काफी कुछ विजिबल चेंजेस दिख रहे हैं।
0: और ये गैप जिसे जनरेशन गैप से हम जानते हैं, ये विजिबल है या इनविजिबल, एक दीवार बनकर हम सभी की जिंदगी में आ चुका है ये गैप, और या फिर जमाने से चला आ रहा है। इसी पढ़ते हुए गैप पर हम आज चर्चा करेंगे और आपके साथ बातें करेंगे। मैं हूं विवेक कुमार, गीतांजलि 92.3 FM मेलबोर्न पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: और मैं हूं मीनू, आपको

0: किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर जब घर घर तक बात सीमित न रहकर खुलकर विषय सबको परेशान करने लगे, अंदर ही अंदर विचलित करने लगे, तो बेहतर है कि हम सब मिलकर बातें करें, समझें उस पहलू को, अपने पहलू को, अपने पक्ष को, और साथ ही दूसरे पक्ष के पहलू को, दूसरी साइड को भी।
1: ये बात, ये सब्जेक्ट हमें नहीं लगता इतना सरल है। हम ह्यूमंस कमजोरी कहिए या समझदारी या कुछ भी, अपने पक्ष के व्यू को सपोर्ट करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी उसी आधार पर जीते चले आए हैं। बताइए हम कैसे इस चर्चा को जस्टिफाई करेंगे, इस गैप को अपनी जनरेशन का नई जनरेशन यानी जेन वाई, मिलेनियल्स या जेन अल्फा के साथ।
0: आपका कहना सही है मीनू जी, फिर भी कोशिश करते हैं, चर्चा की शुरुआत तो करते हैं, क्योंकि मुद्दा ही कुछ ऐसा है। आपस में बात करके कुछ पॉपुलर डिस्कशंस जिनको हमने पॉडकास्ट के माध्यम से सुना, उनके टुकड़ों को सुनते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, एनालाइज करते हुए हम इस मुद्दे पर इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और हमने एक बड़ी ही पसंदीदा कन्वर्सेशन जो कि ऋचा अनिरुद्ध और काव्या सिडानी के बीच में इसी जनरेशंस को लेकर कुछ चर्चा वो कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो हम उसके कुछ हिस्सों को उठाकर डिफरेंट पॉइंट्स या बिंदुओं पर बातें करेंगे, उसको सुनेंगे और फिर उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। बने रहिए श्रोताओं, आप हैं मीनू और विवेक के साथ कशमकश जेनरेशन गैप की, जेन एक्स और जेन जी।

0: चलिए सुनते हैं फिर एक टुकड़ा ऋचा अनिरुद्ध और काव्य सेनानी के पॉडकास्ट से, और फिर मिलकर बातें करेंगे उसके ऊपर।
1: ट्रेजेडीज आर अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। खुशी में कोई नहीं ढूंढता लाइफ का पर्पस, हम सैडनेस में ही लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं। अगर आप एंगर का ब्लैंकेट निकाल देना तो एंगर के नीचे आपको हेल्पलेसनेस दिखेगी। हमारे रिलेशनशिप्स में ये भी प्रॉब्लम है कि कोई अच्छा खासा न्यूट्रल रिलेशनशिप होता ना, हम बोर हो जाते हैं। हमको ड्रामा चाहिए।
2: तो यू थिंक ये जेंजी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है?
1: उनकी तकलीफें ज्यादातर रिलेशनशिप से होने वाली है, बोर्डम से होने वाली है। कॉन्स्टेंट चेंज उनको अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। नॉर्मल सी

0: नहीं फेंकती है आपकी तरफ कि चलो फिर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं. तो एवरी टाइम समथिंग हैपेंस, अब मुझे आदत हो गई कि अब मैं अपने चाय का कप लेके बैठती हूँ और ऐसा कोई फोन आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला, और अब मैं गहरी सांस लेती हूँ और सोचती हूँ ठीक है चाय खत्म करके इस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे. फिर ऊपर भगवान को देखती हूँ और बोलती हूँ कभी कभी मेरी टेस्ट लेना छोड़ दे, कभी किसी और को भी पकड़, मैं थक गई हूँ. टेस्ट कभी खत्म नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगे. प्रॉब्लम्स एक्चुअली एक प्रूफ है कि आप जीवित हैं. जब तक आप जीवित हैं तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगे. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें प्रॉब्लम्स कहते हैं, लेकिन हर एक प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम हमारा रिस्पॉन्स चूज करें, कि थोड़ी सी फिर से ताकत दिखाएं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं. तो द यूनिवर्स इज ऑलवेज टेस्टिंग. अच्छा अच्छा, तूने 2 करोड़ रुपए मांगे तो सही, तूने वो घर मांगा तो सही, तूने वो गाड़ी मांगी तो सही, वो जॉब मांगी, लेकिन जब मैंने ये ट्रिक वाली गुगली फेंकी है तब तूने छोड़ दिया मेहनत करना या आगे बढ़ी है मेहनत करने के लिए?
1: दैट्स द चैलेंज,
0: दैट इज योर अपॉर्चुनिटी. हर एक चैलेंज जो लाइफ का होता है वो सिर्फ आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक से वाकिफ कराता है, दैट हु एम आई. अगर डर लग रहा है तो देन यू से ओ आई हैव अ स्केर्ड पार्ट ऑफ मी आल्सो. अगर कॉन्फिडेंस है तो नो आई हैव अ कॉन्फिडेंट पार्ट ऑफ मी आल्सो. इट इज जस्ट अ मिरर टू हु यू आर. बट आज के ज़माने की प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लाइफ कन्वीनियंट, इजी, आसान, फास्ट, लग्जूरियस और सिंपल चाहिए. दैट इज़ नॉट लाइफ, दैट इज़ अ टीवी सीरीज यू आर वॉचिंग, दैट इज़ नॉट लाइफ.
1: आपको लगता है ये जेंजी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू हमारी जनरेशंस? हम लोग हमेशा बार बार कहते हैं हमारे ज़माने में ये स्ट्रगल्स थे, बट अब ऑफिस में काम करते हैं ना तो अब कोवर्कर्स भी बहुत सारे जेंजी हैं
0: जी.
1: तो वो लोग कहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रगल था
0: जी.
1: या मेरी बेटी ने एकदम मुझसे कहा कि इज इट माय प्रॉब्लम इफ माय पेरेंट्स कैन अफोर्ड दिस, आपके फादर नहीं कर सकते थे अफोर्ड तो आपके पास नहीं था. सो यू थिंक ये जेंजी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये जितना ये लोग लग्जरी या आराम चाह रहे हैं?
0: इट्स नॉट लाइक इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, लेकिन हर एक जनरेशन के स्ट्रगल्स अलग होने वाले हैं. हमारे स्ट्रगल्स ये थे कि हमको ज़िंदगी में कुछ भी आसान तरीके से नहीं मिला, और क्योंकि आसान तरीके से नहीं मिला तो हमें दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना पड़ा, हिम्मत बहुत ज़्यादा दिखानी पड़ी, बहुत ज़्यादा गिरना पड़ा, उठना पड़ा. तो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है मिलेनियल्स में दैट देख लेंगे यार, पहले भी तो कितनी तकलीफों का सामना किया है, फिर से कर लेंगे. और हमें लंबे ड्यूरेशन तक मेहनत करने की आदत है, जल्दी से गिव अप ना करने की आदत है, बिकॉज दैट वॉज आवर कंडीशनिंग. जेन जी को ये सब करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब मिलेनियल्स के बच्चे हुए ना तो उन्होंने अपने जेन जी बच्चों को ऐसे हाथ में लेके बोला कि बेटा मुझे जो नहीं मिला ना जिंदगी में वो मैं सब तुमको दे दूंगी.
1: हम तो बल्कि जेन एक्स हैं थे ना मिलेनियल्स से भी पहले. हाँ, जेन एक्स.
0: तो अब उन बच्चों को मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, तो अब उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं है. लेकिन ये जो जेन जी है, जेन अल्फा है, उनकी तकलीफें हमसे अलग होने वाली हैं. उनकी तकलीफें ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में होने वाली हैं, बोर्डम से होने वाली हैं, कॉन्स्टेंट चेंज उनको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा. हमने अगर एक करियर चुना था तो हमारा वो एक करियर हमको 30 साल
1: लोग नौकरी करते रहते हैं, उसी से रिटायर होते हैं,
0: पकड़ा. लेकिन अब जो ये जनरेशन है, बिकॉज ऑफ एआई, हर तीसरे चौथे साल पे उनकी जॉब्स को खतरा होने वाला है. दे विल हैव टू री इन्वेंट देमसेल्व्स. उन्हें शायद मैरिज नहीं चाहिए, उन्हें शायद बच्चे नहीं चाहिए. सो दिस इज अ वेरी न्यू वर्ल्ड वी आर एंटरिंग. और हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं वो बुरा है या वो सही है? हमको तो पता भी नहीं है कि आगे क्या है. शायद उनका फॉर्मूला हमसे बेटर हो, शायद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमसे बेटर हो, लेकिन हर एक जनरेशन ना अपने एक ईगो में बैठता है. हमारे
1: हमारा समय
0: हमारे मम्मी पापा उनके ईगो में बैठते थे कि हमारे वक्त पे तो हमने ऐसे किया.

0: हम भी वही कर रहे हैं. But the Gen Z wants to do something different. We just have to wait and watch.
1: हाँ, तो अभी हमने इस डिस्कशन में सुना सब बहुत अच्छा लग रहा है, वार्म अप हो रहे हैं इस कन्वर्सेशन से. इसमें एक पॉइंट हमने जो सुना उस पर हम कुछ रेज करना चाहते हैं आपसे, और आप बताइए कि हमारी क्या ये पकड़ कैसी है. इसमें इन्होंने बोला एक समय कि हमारे समय में, मतलब मिलेनियल्स के टाइम या जेन एक्स के टाइम पे, पहले सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता था, है, और अब जो है आसान हो गया है. आप मुझे थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा सुनते हैं हम लोग अपने कन्वर्सेशंस में कि अरे बेटा, या किसी और को बोलते हुए कि अरे बेटा देखो, हमने तो, हम ये साइकिल से चलते थे और हम ये करते थे और हमारे टाइम पे ये नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, पॉकेट मनी नहीं होती थी, लाइक दैट. तो ये आसान, लेकिन क्या आज की जनरेशन में चैलेंजेस इतने आसान है? क्या आज की जनरेशन में पहले के कंपैरिजन में आसान हो गया, या उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं आज के समय में? हमें थोड़ा सा इसमें एक अनकंफर्टेबल सा फील होता है, बताइए.
2: नहीं विवेक जी, जैसे देखिए, लाइक पहले हम लोग जब हुए थे तो हम लोग की ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, सब एक साथ रहते थे. उसमें क्या होता था, ठीक है, किसी जैसे मेरे पापा की तनख्वाह ज्यादा है या चाचा की कम है, लेकिन बच्चे वर इक्वली प्रिविलेज्ड कि अगर एक बच्चे की साइकिल आई है तो दोनों बच्चों की आएगी, या बुआ की शादी है तो सारे लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे. अभी क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, तो हम लोग सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए जमा करते हैं. इसलिए आई थिंक कि बच्चे आजकल ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, बिकॉज सारा हमारा ध्यान उन्हीं पर चलता है.
1: तो मतलब आपने क्या पॉइंट आपका हुआ ये कि आप ये कह रहे हैं कि उस समय जॉइंट फैमिलीज की वजह से हम लोगों को ये एक एडवांटेज था.
2: हाँ,
1: टुगेदर में हमारी प्रॉब्लम्स सीमलेसली, हमको पता भी नहीं चलता था कि ऐसे सॉल्व हो गई.
2: दादाजी गए सब्जी ले आए बाजार से,
1: कुछ भी है, मतलब वो एक समस्या होती नहीं थी. और एट द एंड ऑफ द डे आपका दिन कैसे कट गया, आपस में मिलजुल के, किसी ने फीस भर दी, कोई चला गया, कोई स्टेशन से पिक कर लाया, यू नो. आज की डेट में आप कह रही हैं कि बच्चों को आसान हो गया है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू?
2: आसान तो नहीं कहूंगी, क्योंकि अब उनको दूध से, सब्जी से, बिल से, सब अकेले अपने आप ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, वो डिवाइडेड होती थी.
1: करेक्ट. तो ये आपका पॉइंट है इस एस्पेक्ट को लेकर कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज वर्सेस जॉइंट फैमिलीज का जो इम्पैक्ट है आज की डेट में बहुत ही एक आइसोलेटेड, एक छोटा सा स्कोप में हम लोग जी रहे हैं. इस बात को हमको थोड़ा आप कन्विंस करिए कि उनकी मुश्किल, उनकी जिंदगी, बच्चों की या आज की जनरेशन की आसान हो गई है. इस बात को हमें थोड़ा सा, या मुश्किल हो गई है, मतलब मुश्किल हो गई है, मेरा कहने का मतलब यह है.
2: लगता तो है कि मुश्किल ज्यादा हो गई है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज में हो क्या गया है कि हमारा पूरा ध्यान बच्चों पर ही रहता है कि अभी बच्चे आए, पापा जी आए, शाम को खाना कितने बजे खाया, स्कूल से कितने बजे आए, कौन सी गेम्स खेली, क्या खाया, क्या पिया, कितना पढ़ाई करी. पहले ये होता था जॉइंट फैमिलीज में, बच्चे आए, अपना किसी ने पढ़ा दिया, किसी ने कब आए, कब
1: जॉइंट फैमिली ना भी हो तब भी, मतलब पहले अपने आप में मशहूर रहते थे, इतना वरीड नहीं होते थे.
2: अब क्या है कि बच्चों के पीछे हम लोग हाथ धो के पड़े ही रहते हैं, तो उनकी मुश्किलें ज्यादा ही बढ़ गई हैं, स्क्रूटनी, अंडर स्क्रूटनी रहते हैं,
1: मतलब स्पॉटलाइट में बच्चे हमेशा फील करते हैं, तो वो स्ट्रेस उनको बराबर लगा रहता है. या अब आज की डेट में हम लोग उनको देखते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल क्यों है, तुम क्या देख रहे हो, तो वो आपसे कतराते हैं आपके सामने आने में, तो वो अंदर कमरे में रहते हैं. Isn't it?
2: ये तो है, distances इस तरह से तो बढ़ गए हैं कहना चाहिए.
1: पहले आपके घर में जो वातावरण है उसमें सब अपना बैठ गए, चूंकि आपका ना टीवी है ना कुछ, कोई भी चीज है तो आप बातें करते थे, यू नो, आप मन मार के बातें करते थे. आपका पड़ोस वाले आ जाते थे बिना बताए, आ गए, बातें हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम्स डिस्कशन हो रहा है, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो गए, सुना नहीं सुना. आज की डेट में वो आपसे कतरा रहे हैं, वो आपको, क्योंकि आपका, आप उनको टोकोगे,
2: बाहर जाके बच्चे मोहल्ले वाले सब बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं, लकड़ी डांग खेल रहे हैं, आजकल बच्चों को खेलते हुए ही नहीं देखते हम लोग ये सब।
1: या वही जो स्कूल की रूटीन है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जहाँ बाहर आए तो फिर हमें शाम को वो दिखता ही नहीं, वो कमरे में बैठे होते हैं, उनके हाथ में कुछ होता है, कुछ बात करो, कुछ क्वेश्चन करो।
2: आई थिंक पढ़ाई का भी स्ट्रेस बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ज्यादा हो गया है, मतलब माँ बाप के अलावा भी काफी प्रेशर है, पीयर प्रेशर बोलते हैं,
1: एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो काफी प्ले कर रहे हैं,
2: पीयर प्रेशर ने आपने कितना पढ़ाई करी और कौन सी जॉब में है।
1: ठीक है, तो हम ये इस पे आ रहे हैं कि आसान शायद इतनी आसानी से हम कह देते हैं वो शायद ठीक नहीं है, उनको भी जो आज के समय के चैलेंजेस हैं, बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं,
2: एवरीडे चैलेंजेस,
1: उनको हमें समझना चाहिए और उसको किसी तरह से उसको ओवरकम करना चाहिए कि उनको ऐसा ना लगे कि हम स्पॉटलाइट में हैं, हमको टोका जाएगा, तो वो बच्चे आपके साथ थोड़ा सा ईज होंगे।
3: In these songs are

0: बड़े हो गए।
1: बैक टू पॉडकास्ट, सुनते हैं ऋचा और काव्या को इस जेन जी के जनरेशन के ऊपर, इस जनरेशन गैप के ऊपर क्या कहती हैं वो।
2: हम भी वही कर रहे हैं।
3: But the Gen Z wants to do something different. We just have to wait and watch.
4: So मैं I accept कि मैं ये करती हूँ। दिन में शायद 10 बार हमारे टाइम में ऐसा होता था, तुम लोग ये। So any mother or father like me, जिनके अब Gen Z बच्चे हैं या co-workers हैं साथ में, हमको अपने अपने उसमें क्या चेंज लाना चाहिए, अपने बिहेवियर में या अपनी बातों में? You think we need to change?
3: The Gen Z is forcing us to give up control.
4: Yeah.
3: Because we are control freaks. ओके, और हम जेन जी जेन अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही बच्चे हैं, हम उनको अबैंडन नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते, कितना ही डांट लेंगे, प्यार तो हमें हमारे बच्चों से ही है, लेकिन क्योंकि उनके फंडा बिल्कुल अलग हैं, फॉर्मूलाज बिल्कुल अलग हैं, वी हैव टू सरेंडर। सो आई सी द जेन जी एज अ स्पिरिचुअल गुरु फॉर मी, कि मुझे सिर्फ उनको देख के अनकंफर्टेबल महसूस करना है और उस डिस्कम्फर्ट से कंफर्टेबल हो जाना है। दैट यस, दे विल ब्रिंग अप न्यू थिंग्स ऑल द टाइम एंड आई हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट,
4: एंड दे विल नॉट ब्लाइंडली लिसन टू यू। हमारी मम्मी पापा ने कह दिया ये तो ये, दिन तो दिन, रात तो रात, ये कहेंगे नहीं, इस समय तो इतना बज रहा है।
3: बिल्कुल, तो हमारी जो पुरानी बिलीव सिस्टम्स हैं उन्हें भी वो चैलेंज करेंगे कि क्यों कर रहे हो भाई ये, और हमारे पास जवाब नहीं होंगे, तो शायद हम भी थोड़ा और डीप जाएंगे जवाब खोजने के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जेनरेशन, लेकिन हमें जेन जी से डर लगता है क्योंकि हमारे पास उनके सवालों के जवाब नहीं है, और वो पैटर्न ब्रेकर्स हैं एक तरीके से। जब वो कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमें घर नहीं खरीदना, हमें एक जॉब को पकड़ के 25 साल नहीं बैठना, उन्होंने हमारी जेनरेशन और हमारे पहले की जेनरेशन को देखा हुआ है, हमारी शादियों को देखा हुआ है, हमारे स्ट्रेस को देखा हुआ है, तो वो चैलेंज करते हैं कि क्या अपने मैरिजेस, अपने जॉब्स के बारे में बात करते हो, इतनी कोई रंगीन नहीं थी आपकी लाइफ, आप कहाँ खुश थे, आपने तो स्ट्रेस में पूरी जिंदगी बिता दी, हमको नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, हमें कुछ अलग चाहिए। बट हु आर वी टू से दैट दे आर रॉन्ग, क्योंकि हमें हमारा तरीका सही लगता है तो हम हमारे ईगो को पकड़ के बैठते हैं, एंड द जेन जी इज चैलेंजिंग आवर ईगो, इसलिए हमें तकलीफ होती है।
4: ये कार्मिक साइकिल है,
3: इट्स अ लर्निंग साइकिल, ऑल ऑफ अस हैव टू, दिस इज द ओनली वे यू विल इवॉल्व, ईदर यू आर ग्रोइंग or you are dying. So the Gen Z is helping you to grow. आपके घर में अगर कोई नया गैजेट आता है, आप अकेले सेट कर पाते हो उसे? You need your Gen Z children, right? वैसे ही आगे बहुत सारी सिस्टम्स आएंगी जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं है, Gen Z प्रिपेयर है, और हमें एक्चुअली हमारा ईगो छोड़ के उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। That is what we have to learn.
4: Mental health issues को भी लेकर मुझे लगता है ये generation ज़्यादा open है। जैसे हम लोग आपकी, हम लोगों की age group शायद अब ये कहने लगे कि हाँ depression हो रहा है या depression में कभी थे। ये लोग तो शुरू से teenage से बोल देते हैं कि you know I'm feeling depressed या मुझे anxiety हो रही, panic attack आ रहा है। ये words के साथ ये लोग बड़े comfortable हैं।
3: बहुत open हैं जो Gen Z हैं, वो बहुत open हैं, उन्हें किसी का डर नहीं। डर की बात यही है कि वो किसी से नहीं डरते, लेकिन खुशी की बात भी यही है कि वो किसी से नहीं डरते, और क्योंकि वो हिम्मत दिखा रहे हैं ओपनली अपनी बात रखने का, तो हमारा जेनरेशन भी सीख रहा है कि चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, इसलिए हमारी स्टोरीज अब निकल रही हैं। इस जेनरेशन को हम बहुत वोक कहते हैं, they will not hold back their words. Necessary नहीं है कि जो हर एक बच्चा कह रहा है कि उन्हें depression है, उसे depression है, लेकिन mood swings तो सबको होते हैं, लेकिन आजकल Instagram और ये जो apps हैं उनकी वजह से सबके पास ये vocabulary आ गई है कि अगर मुझे सुबह मेरा mood अच्छा था, शाम को बुरा था, तो oh god I'm so bipolar, और अगर कोई बोल रहा है दैट नो आई डोंट वांट यू टू डू दिस, ओ माय गॉड दिस पर्सन इज सो नार्सिसिस्टिक, तो द प्रॉब्लम इज कि जेन जी बहुत फटाक से लेबल्स लगा देती है हर इंसान पे.
4: टॉक्सिक है
3: कुछ भी अगर डिफिकल्ट होता है तो उसे टॉक्सिक का लेबल लगा देती है.

रक्षाबंधन का पर्व है। सभी भाई बहनों को, सभी परिवारों को इस अवसर पर गीतांजलि की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक संगीत की एक अच्छी, एक खूबसूरत लड़ी, जिसको पेश किया है नवकिश मुदगिल ने। नवकिश मुदगिल हमारे लिए नए नहीं है, हमारे मेलबोर्न के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इन्होंने ये पॉपुलरली जाने गए हैं नवल किशोर मुदगिल के नाम से। आपने कंपोज किया और गाया और उस के लिए म्यूजिक डायरेक्शन दिया क्रिएटिव विक्टोरिया के दिल सोल मेलबोर्न सीरीज की 8 म्यूजिक वीडियो में से ये एक पहला रिलीज कर रहे हैं, जो है राखड़ी सॉन्ग, रक्षाबंधन के लिए इन्होंने 21 अगस्त को रिलीज करा। इस गाने के बोल, इस गीत के बोल सोनू सिंह के। सो दिल सोल सीरीज मेलबोर्न के लिए नवकिश मुदगिल की पेशकश आपके सामने ये रही।

0: बहुत खूबसूरत गीत, मजा आ गया। और आप हैं मीनू और विवेक के साथ आज के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कश्मकश जनरेशन दर जनरेशन बदलाव की, चेंजेस की, आज के चैलेंजेस की।
1: तो विवेक जी जरा रिफ्रेश करिए, बेबी बूमर्स, जेन एक्स, ये सब मतलब और क्या क्या है, मतलब कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन करी गई है ना। बेबी बूमर्स जैसे 50s के लोगों को कहते थे।
0: हाँ। नहीं, ये चलिए, ये सही करा। अक्सर हम लोग कभी कभी तो बेबी बूमर्स जैसे हैं वो मिड 40s से मिड 60s तक का जो 10-20 साल का जो वो है मौका, उसमें बेबी बूमर्स वाला, और उसमें उसके बाद जो है मिड 60s से 80s तक जो है वो जेन एक्स बोला गया, ठीक है। और उसके बाद 80s से लेके 90s, 96, 95 तक जो है वो मिलेनियल्स की कैटेगरी में जनरेशन को पॉपुलरली बोला गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 97 से 2010, 11, 12 तक जो है वो जेन जी बोला,
1: जेन जी
0: जो आपके नए में उसके आए। फिर उसके बाद जो है वो जेन अल्फा चल रहा है अभी आज की डेट तक,
1: जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं।
0: जी। तो मतलब अब बेबी बूमर्स के टाइम पे क्या स्टेबिलिटी थी, लॉयल्टी थी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म करियर्स और सिक्योरिटी, वो जो सब सुरा एक उसका एक जमाना था। फिर हम जब जेन एक्स में मूव करे टूवर्ड्स 80s, तो वो इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड टाइप के, मतलब थोड़ा सा बदलाव आने लगा। और फिर इस तरह से जेन जी वगैरह जो है थोड़े अब टेक सेवी हो गए, क्रिएटिव हो गए, और उनके अपने फ्रीडम वगैरह के थॉट्स आने लगे। और अब जो लेटेस्ट जो जनरेशन आ गई है, जो कि अभी बच्चे ही हैं सब 2010-12 के बाद, ये सब डिजिटल सेवी निकल रहे हैं, इनके हाथ में स्मार्टफोन है और ये सब समझ रहे हैं, फास्ट लर्नर्स हैं, उनको समझने में चाहे फोन नहीं भी हो लेकिन उनकी समझ में उनको जो दिखाई दे रहा है वो इतना जबरदस्त है।
1: इनके लिए तो कहा जाता है कि माँ के पेट से ही सीख के आ रहे हैं।
0: तो ये है सब।
2: एक और टुकड़ा ऋचा और काव्या की बातों का सिलसिले में से, जो कि उन्होंने बड़ी खतरनाक पॉइंट के ऊपर कुछ बातें कही, सुनते हैं और फिर हम लोग चर्चा करेंगे।
3: दैट सेल्फिशनेस, दैट पहले एक जो कपल होता था ना, वो जैसे हमारे दादी दादा जिंदगी भर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा, उतार चढ़ाव उन्होंने भी बहुत देखे हैं,
4: लड़ते झगड़ते,
3: लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे कि जो भी है भाई, मुझे तू अच्छी लगे, मुझे तू अच्छा नहीं लगे, यही है जो है। एंड इट इज अस अगेंस्ट द वर्ल्ड, इट इज नॉट मी अगेंस्ट यू। नाउ अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स आर कमिंग एज बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। आप टेबल पे क्या ला रहे हो, मैं तो इतना ला रहे हो, अच्छा आप कम ला रहे हो, दैट्स नॉट गुड इनफ। रिलेशनशिप्स की वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू से बांधी जा रही है, तो उसका एसेंस ही खत्म हो रहा है। इसलिए जो जेन जी, जेन अल्फा, दे आर सेइंग वी डोंट वांट टू मैरी, क्यों शादी क्यों करें,
4: उनको लगता है आपने बहुत एडजस्ट किया, हम क्यों करें,
3: एडजस्ट क्यों करें। मैं आपको एक लाइन सुनाती हूँ, मैंने इतनी बार सुनी है, इतने लोगों से सुनी है, एक ग्लास दूध पीने के लिए कोई गाय खरीदता है क्या? दिस इज हाउ दे हैव डिफाइंड देयर रिलेशनशिप्स।
4: ओह माय गॉड,
3: कि मैं क्यों किसी और को पालूं, मैं उसकी तकलीफों का मैं क्यों ध्यान रखूं?
4: Oh my God.
3: उनकी जरूरतों की मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मिल जाएंगे, बाहर जाना है अकेले ट्रैवल कर सकता हूं, बच्चे वो तो ऐसे भी हो जाते हैं आजकल, सेक्स फ्री फ्लोइंग, पैसा खुद कमाती हूं, घर खुद बना लूंगी, मैं क्यों जिंदगी भर किसी चीज में बंधी रहूं? अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में ऐसे सोचेंगे, एक दिन इतने लोनली हो जाएंगे ना कि खाना खाना है तो कोई आपको कंपनी नहीं मिलेगी। चाइना में ये शुरू हो चुका है बाय द वे, अ कंपेनियनशिप बिजनेस,
4: आई थिंक जापान में भी है,
3: कि आप इतने अकेले हैं कि आपको किसी और को बुलाना पड़ता है कि भाई मुझे 2 घंटे का यहाँ पे काम है, अकेले नहीं जाना, इतने पैसे ले ले मेरे साथ आ जा। यू आर बाइंग अ कंपेनियन जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन डेवलपिंग दैट रिलेशनशिप। यू आर नॉट बाइंग अ कंपेनियन टू कीप विथ यू फॉर लाइफ, यू आर बाइंग अ कंपेनियन सो यू कैन से बाय बाय व्हेन यू आर नॉट इन अ मूड।
4: This is so dangerous.
3: Yes, it is the most dangerous thing that could happen in the next 10, 12, 15 years of our life.
4: आपको लगता है इंडिया में भी इतना ये क्योंकि हमारा हमें अभी भी लगता है थोड़ा सा भी फैमिली से है बंधे हुए हैं होगा यहाँ भी
3: 100% होगा आप देखेंगे शायद 10, 12, 15 साल में मैरिज विद 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स इट विल कम

0: अच्छा ये जो चर्चा चल रही है अभी हम लोग सुन रहे हैं ऋचा जी की, ये सब काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स यही हैं, पॉइंट्स में आपके कई तरह के फैक्टर्स भी होते हैं। हमको सुनते सुनते जैसे महसूस हो रहा था, अब आप एक से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, आपके क्या इसमें आपके दिमाग में क्या आता है, जैसे कि पहले की जनरेशन की बात करें, जैसे हमारे मम्मी डैडी या हम भी, मतलब उसी 60s 70s की अगर बात करें जब हमने जो जमाना देखा था, ऐसे बच्चे उस वक्त जो हमारे दिमाग में सवाल आते थे वर्सेस आज में, आपके मुंह में हम डालना नहीं चाहता हूं बातें, आप बताइए आपके दिमाग में क्या आता है।
1: भाई मेरा तो जैसे हम लोग जब बच्चे थे हमें बताया जाता था दिवाली हमने क्यों मनाते हैं,
0: सो वी आर टॉकिंग अबाउट 70s
1: जब कि रामचंद्र जी आए थे, इस खुशी में दिए जलाए गए थे और दिवाली मनाई जाए थे। जो आज के बच्चे हैं उनका दिमाग इतना चलता है, आई थिंक बच्चे शायद माँ बाप से थोड़ा कम डरने लगे, उसकी वजह से उनका दिमाग ज्यादा चलने लगा है। कि तो सवाल ये होता है आजकल के बच्चों का, वो बोलते हैं कि जब रामचंद्र जी आए थे आपने दिवाली उसके लिए मनाई, लेकिन आप पूजा गणेश जी और लक्ष्मी जी की करते हो, ये बात तो सही थी।
0: तो ये तो जैसे आपने उठाया पार्ट, नहीं ये तो आपने एकदम सही बोला है कि बच्चे जो है वो ज्यादा अलर्ट हो रहे हैं और जस्ट लाइक दैट आपकी बात को बाई नहीं करते हैं, वो ज़्यादा मजबूती से अपने को इन्फॉर्म बनाते हैं। अब उसका कारण मुझे जो समझ में आता है, उस वक्त जो है हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होते थे, हम मैगजीन पढ़ते थे या जो स्कूलों में बता दिया गया बस्ते में जो किताबें हैं उसमें जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ लिए, अखबार में या किसी से अड़ोस पड़ोस में बातें हो रही हैं तो वो हमको सुनाई देता था। तो हमारा जो स्कोप था हमारी नॉलेज का वो एक दायरा होता, एक लिमिटेड दायरा था। अगर हम आगे आज के समय पर आते हैं, आज के समय में डिजिटली इतनी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव फॉर्म में आ रही है कि आपको इतने पर्सपेक्टिव, सही गलत फेक, इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और लोगों के पास एक्सेस इतनी ज्यादा है, तो उनके पास अब चलिए हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, आप यूं एक मान के चलिए कि बातें सही बातें ले रहा है, फेक को मार दीजिए गोली थोड़ी देर के लिए, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आपने जैसे बोला गणेश लक्ष्मी का बारे में या रामचंद्र जी आए थे तो दिवाली उसलिए मना, इनके पास इसके अलावा चार और मुद्दे होंगे जो आपको दिवाली के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होली के लिए भी इसी तरह से कर सकते हैं, या न्यू ईयर लोग मनाते हैं, हिंदू कैलेंडर मनाते हैं, तमाम तरह में आपको वो आपके पास इतने इक्विप नहीं है आप, तो जब आपके पास जवाब इतने मजबूती वाले नहीं होते हैं तो वो आपको एक कमजोर लेवल पे समझने लगते हैं। आई थिंक दैट्स अ नेचुरल थिंग कि आप जो बच्चा है, जो बेटा है, जो आपका किसी का टीनेजर है, ही इज इक्विप्ड विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक दैट इज वन गैप दैट मेरे को लगता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और अच्छा इसी से रिलेटेड आप ये बताइए कि आप उस पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो आप बदलाव के बारे में आपके क्या सोच रहे हैं, मतलब जो पहले समय में और आज के समय में उसका क्या असर है क्या जनरेशंस में?
1: आजकल बच्चे सच में बहुत बिजी हो गए हैं, एक तो उनको स्कूल से आओ तो इस ट्यूशन पे जाना है, कभी उस ट्यूशन पे जाना है, कोचिंग, उनके पास वक्त ही नहीं है कि इधर उधर वो खेल पाए, जाके पड़ोस में बात कर पाए, मतलब अब ये हर जगह ही देखा जा रहा है, इंडिया में तो इंडिया में, यहाँ पर भी विदेशों में भी बच्चों को, मतलब अब आपको सेलेक्टिव स्कूल के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी अलग से, वो सब चल रहा है।
0: तो वो पीयर प्रेशर और काफी आज की जनरेशन में सामने खुल के आ रहा है, किसी भी सीट के लिए इंजीनियरिंग में है या डॉक्टर है, मेडिकल है या और भी ऑप्शंस जो हैं, तो उसमें वर्सेस हमारे जो पुराने जनरेशंस थे जबकि ये डिजिटल ये सब नहीं होता था, कॉम्पिटिटिव इतना नहीं था, करियर ऑप्शंस एक चुने हुए होते थे कि आप मेडिसिन में जाओगे, इंजीनियर बनोगे या बैंक में जाओगे या इंश्योरेंस में जाओगे या बिजनेस करोगे, हाँ, तो ये इनका जो है काफी गहरा प्रभाव जनरेशन में आ रहा है और उस बदलाव को संभालना एक कठिन और बड़ा काफी चैलेंजिंग होता जा रहा है। क्यों?
1: बच्चों के लिए
0: तो जो बेसिक चीज है, जो एजुकेशन, हमारी शिक्षा, ये इसके स्वरूप में एक काफी बड़ा बदलाव आया है। पहले हमारी चंद किताबें होती थी, हिंदी की दो किताबें हो गई, उसमें कविता की हो गई, एक गद्य हो गई, एक पद्य हो गई, उसमें आपने जो भी कहानियां पढ़ी और इतिहास के बारे में पढ़ा वो वहीं तक सीमित रहता था, या आपने कुछ एडिशनल, आपके ज्यादा एक्सेस है तो आप किसी की बातें सुन रहे हो, किसी के और लेक्चर सुन रहे हो। लेकिन बियॉन्ड दिस लाइब्रेरी की चंद किताबें और आ गई, या कुछ किताबें मैगजीन आती थी, चंदा मामा, पराग, नंदन टाइप की, उससे आपने कुछ और पढ़ लिया। आज की डेट में तो इतने रील्स, इतनी इंफॉर्मेशन, इवन लाइब्रेरीज आप दुनिया भर की एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक दैट इज अनदर पॉइंट इन इंक्रीजिंग द गैप। आई थिंक
2: तो बात शुरू करते हैं कहाँ से, रूबिका तुमसे शुरू करते हैं। तुमको लगता है अब के बच्चे, अब ये जो जेन जी और अल्फा ये सब जो आ रहे हैं, लोनलीनेस बढ़ रही है हमारे समाज में?
3: एब्सोल्युटली, और मैं उसके लिए दो लोगों को बहुत बड़े तौर पर जिम्मेदार मानती हूँ। पहले लोगों की कैटेगरी में आते हैं हम माँ बाप, जिन्होंने ये बच्चों के हाथ में थमा दिया है। सो देयर टू पॉइंट्स, वन इज आवर पेरेंट्स, हमारी गलती है, और दूसरा है ये मोबाइल फ़ोन। तो मैंने अक्सर देखा है, मेरे बच्चे तो बहुत बातूनी है, मतलब दुनिया जहान की कहानियाँ, बिकॉज उनको केवल 15 मिनट का स्क्रीन टाइम मिलता है, उसके अलावा उनको दुनिया जहान के लोगों से बात करनी है, कुछ नहीं मिले तो पेड़ पौधों से बात करनी है।
2: बच्चों से मिली हूँ, बहुत बातूनी है,
3: बहुत बातूनी है, और वो बातूनी इसलिए हो पाए हैं क्योंकि उनके पास ये मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो होता ये है कि आपके ब्लिंकर्स ऑन, जैसे ये मोबाइल फ़ोन या टैब या कुछ भी आपके हाथ में आया, तो आपका काम सिर्फ ये है, यू आर कनेक्टिंग विद समथिंग विच डजंट कनेक्ट बैक टू यू। देर इज़ नो टू वे कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं है। तो होता ये है कि आप नए नए बच्चों से, जैसे मैं रिचा दी, होता है कि मैं जब बच्चों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, हेलो।
2: हम लोग की जनरेशन में सचिन, तुम्हें अकेलापन है या तुम्हें लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो किससे डिस्कस करोगे?
4: आई हैव अनदर क्वेश्चन, आई विल ऐड ऑन टू दिस। क्या आप कंफर्टेबल हैं अपने पेरेंट्स के साथ वो परेशानी डिस्कस करने में? क्या आप वो बॉन्ड, वो स्पेस शेयर करते
5: हैं? ये प्रॉब्लम हमारे सामने थी क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से कभी पूछ ही नहीं पाते। अगर पेरेंट्स ने डांट दिया तो डांट दिया, वो अल्टीमेट है, फाइनल। या पेरेंट्स ऐसे दरवाजे पे हैं तो मैं दीवार कूद कर घर पे चढ़ रहा हूँ, छत से चढ़ता था घर के अंदर के, पापा ना देख ले कभी, ये स्थिति होती थी।
2: तो पर आपके अकेले थे, आपके
5: नहीं, अकेले
2: अकेलापन था
5: क्योंकि हमारे पास दोस्त बहुत सारे थे। आपको कभी प्रॉब्लम हुई तो दोस्त के साथ बैठे चार घंटे बातें की, हमारे पास दोस्त के पास इतना टाइम बीतता था कि घर नहीं आते। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने फ्रेंड्स बनाए वर्चुअल, 1000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब रोते हैं तो इसमें से एक भी कोई नहीं आता। वो भले इमोजी भेज देगा लेकिन वो सामने कोई नहीं रहेगा,
2: हग वाला इमोजी भेज
5: देगा। तो एक सिंपल सा, मुझे
4: मार पिटाई भी हुई है, डांट भी पड़ी है। हम जैसे रूबिका ने बोला शुरू में कि आप अगर किसी से बात करते समय अपने मोबाइल में चेक कर रहे हो तो वो मम्मी वहीं उसके सामने डांट देती थी, आंटी बात कर रही है ना, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि मम्मी आपको किसी से मिलवा रही है या सामने से आंटी निकल के जा रही है तो आप अपने फोन में देखो, क्योंकि आपको पता है आपको डांट पड़ने वाली है। बट अगेन
1: एक और पॉइंट है, जैसे पहले हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे हमारे ज़माने में, तो एक होली पे या दिवाली पे या कोई त्यौहार है या बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तब हम लोग कपड़े खरीदते थे या बाहर
0: बनाए
1: जाते थे या बाहर खाने जाते थे। आजकल के बच्चे जो जेंजी हैं, उनका तो जब मन होता है मॉल में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, जो खाना होता है खाते हैं।
0: हाँ, तो वो जेंजी है, और जेंजी को तो हम कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ पूरी फैमिली का सेटअप ही ऐसा हो गया है। क्योंकि अब जो पहले आप, हम लोग अगर सोचे, हम लोग अपने समय में, तो वो चूंकि रिसोर्सेज भी कम होते थे और कहीं जाना है तो, और लिमिटेड रेस्टोरेंट्स हैं तो आप वैसे जाते थे। आज की डेट में फिर जेंजी ही नहीं, पूरा पूरा परिवार ही का माहौल बदल रहा है।
1: मुझे लगता है विवेक जी, उस जमाने में जो वो बर्थडे पे गिफ्ट मिलता था उसकी बातें और थी। अब आजकल क्या चाहिए मम्मी, क्या चाहिए आपको, अरे सब कुछ तो है बेटा, वो खुशी नहीं रह गई है जैसे।
0: वो तो है खुशी, यस, तो उसका कारण क्या है? कारण क्या है? तो ये जो बदलाव है, क्योंकि रिसोर्सेज पहले हमारे लिमिटेड होते थे। अच्छा, हाँ, अब देखिए, तो पुराने जमाने में भाई लोन फोन का इतना, ईएमआईज का कोई ज्यादा नहीं कुछ प्रेशर होता था आपका, जो अगर कोई चीज लेनी है, टीवी लेना है, कलर टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, या कूलर लेना है फॉर दैट एग्जांपल, तो फॉर दैट मैटर, तो वो आप प्लान करते थे, अच्छा चलो अभी इस साल हम इस सीजन में आगे जाके फ्रिज लेंगे, उसके लिए जमा होता था या कुछ होता था। आज की डेट में आपने अगर खड़े हैं आप डीलर के पास,

0: तो आप एक कार खरीद सकते हो जो कि कितने भी लाख की हो, कितने भी उसकी हो, आप उसको लोन में आपके पास एज लॉन्ग एज आप जॉब पे हैं, सिक्योर्ड उस पे हैं, आपको मिल जाता है। और आप होता क्या है फिर आज की जनरेशन में क्या हो गया है, एक तो लाइफस्टाइल पैटर्न्स इतने बदल गए हैं क्योंकि सबको पहले ही साल में मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, दोनों मिलके पार्टनर्स ये लेते हैं और फिर अंडर इस
1: प्रेशर हो
0: अंडर
1: जाता है।
0: प्रेशर, अंडर स्ट्रेस, फिर उसकी ईएमआई सामने होती है और फिर आप कंटिन्यूएशन में चलते हो। तो वो ये सब बदलाव हैं, पहले ये स्ट्रेस थोड़ा सा नहीं
1: तभी
0: होते,
1: तो कहते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया है अब।
0: मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो इसकी ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे जनरेशंस को चेंज ला रहा है। अब उनकी गलती तो नहीं है, माहौल ही ऐसा हो गया है। मतलब हम तो ये कहते हैं भाई सहारे से
1: कैसे दूर
0: चलो।
1: जाता है, यू गाइज डोंट एक्सरसाइज, यू आर टू मच इन टू ईटिंग दोज फास्ट
2: जंक
1: फूड्स, जंक फूड। आपको हर चीज़ एकदम, एक तो पहले तो आप साला कुछ लेने जाना होता था तो दुकान पे जाते थे, उससे
2: अरे
1: दुकान वाले
2: हाँ
1: से चार बात करनी होती थी। अब आपके पास ब्लिंकिट है, आपको सब्जी लेने
2: दुनिया
1: होती तो
2: समेट
1: सब्जी
2: गई
1: वाले
2: है।
1: के साथ आप बार्गेन करते थे, अरे नहीं भैया 10 रुपए किलो बड़ी महंगी है, हम सोना थोड़ी खरीद रहे हैं। तो वो बेचारा बोलता था अच्छा 1 रुपया कम ले लो, तो उससे आपकी बातचीत होगी। आपने सब जगह
2: सारी
1: से अपने
2: बातचीत
1: आप
2: बंद
1: को
2: करके
1: डिस्कनेक्ट
2: बिल्कुल
1: कर दिया है। अब वो जो सफाई वाला आता है जब आपके घर से कूड़ा उठाने के लिए आता है, आपने उससे कभी पूछा है भैया कैसे हो, गुड मॉर्निंग? ब्लिंकिट वाला जब आपके घर पे आता है, क्या आपने उससे जब थैला लिया है तो उसे कहा है भाई पानी चाहिए 1 ग्लास, कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, आपने उसको भी रोबोट बना दिया है। वो जो बाइक जिस पर आप बैठकर जाते हैं, क्या आपने उससे सलाम दुआ की है कभी कि भैया तुझे आजकल गर्मी ज्यादा लग रही होगी? नहीं, हमें बात ही नहीं करनी है, आई जस्ट वॉन्ट टू पुट माई तंबूरा इन माई ईयर्स एंड लिसन टू आई डोंट नो वॉट।
2: और हमारी जनरेशन करती है तो बच्चों को अटपटा लगता है। ऐसे मैं तो
1: हाँ।
2: कैब में बैठूंगी तो कैब वाले भैया से बात, तो मेरी बेटी ना ऐसे देखती है कि आप सबसे बात करनी होती है। मैं निकलते गार्ड से पूछ लूंगी, तो गार्ड्स के घर में भी अगर किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता है अपनी सोसाइटी में किसी के यहाँ शादी हुई है, किसी सबका पता रहता है, मुझे गार्ड्स शादी का कार्ड देने आते हैं। तो मेरे घर में
0: किस बात का प्रेशर, लेकिन रियलिटी ये है कि हर दूसरा बंदा ये कर रहा है तो हम किसे पीछे रहें।
1: पीयर प्रेशर जैसे
0: वो
1: कहते
0: थ्री
1: हैं।
0: बेडरूम के घर में इस लोकेलिटी में रह रहा है, इसके पास बीएमडब्ल्यू, इसके पास ऑडी है या इसके पास टोयोटा है, वो करके आपको भी उसके साथ मैचिंग करना है। हम सबको नहीं कह रहे हैं लेकिन जनरली ये कॉन्सेप्ट हो गया है क्योंकि एक्सेस टू दोज रिसोर्सेस, आप
1: इजीली
0: आपकी
1: अवेलेबल
0: अगर
1: है।
0: इनकम जो भी हो, सेविंग्स कुछ भी हो, आपके पास अगर रिपेमेंट का एक सर्टेन ईएमआई पे करने का, तो इसका भुगताना कौन कर रहा है? आज की जनरेशन कर रही है इसको। हम लोग तो निकल लिए मकान मुकुन बना के तो, लेकिन ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये एक चीज है। दूसरी, आप कुछ कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, जो शॉपिंग वगैरह जो हम लोग जाते हैं, पहले जाते थे किसी
1: पहले जाते थे तो मतलब एक लिमिटेड ओपन में दुकानें होती थी, तो पूरा दुकानदार पहचानता था ये बच्चा किस घर से आया है या इनका कौन सा घर है, तो वो अच्छे से एक पर्सनल टच था। आजकल तो मॉल इतने हो गए हैं कि जाइए कुछ भी खरीदिए, पर्सनल पर्सनल टच तो नहीं रह गया।
0: हाँ अच्छा। और दूसरी तरह से देखिए अगर, तो इसमें आप सही कह रही हैं। हम इसी का एक दूसरा एग्जांपल, जैसे हम लोग पहले रहते थे तो वो हमारे मोहल्ले के कुछ रिक्शे वाले या टैक्सी वाले जो खड़े हुए हैं, उनको बाई नेम, आइए साहब ये वो करके आप बात करके निकल लेते थे, तो वही पर्सनल टच। आज की डेट में आप टैक्सी वैक्सी तो ऐसे खड़ी नहीं है, आपको ऊबर करना है, ऊबर वाला आएगा, कौन आएगा, किस शक्ल का आएगा, कहाँ से आएगा, आप बैठते हो। तो आज की अगर जनरेशन ट्रेवल कर रही है तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल सोशल हो जाओ उनके साथ। दे हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देमसेल्स, अभी जैसा कि हम बात में सुन रहे थे। तो ये सारा सिनेरियो जो है, बदलाव जो है, वो हमारे कई फैक्टर्स हैं।
1: अब समय तो किनारे आ रहा है इस, लेकिन बस जाते जाते
0: जी,
1: हम, मेरा
0: करेक्ट
1: ये
0: जी।
1: कहना रहेगा कि बच्चे आजकल के अपने रिश्ते संभाल के रखें, कंपेनियनशिप हो, चाहे सिबलिंग्स का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, बस अगर जब तक बच्चे ये बात समझ जाएं कि हमारे रिश्ते सबसे ऊंचे हैं, चाहे एआई का जमाना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोबोट आ गए हो, बस इतना ही अंत में कहना चाहूंगी। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं को मीनू का नमस्कार और आपका
3: वीकेंड अच्छा हो,
0: बच्चे जो है वो आगे ऐसे रिश्तों पे ध्यान दें. तो आई थिंक एट द सेम टाइम हमारी जनरेशन को भी या हमसे पहले वाली जनरेशन को भी ये जानना और ये समझना जरूरी है कि हम किस, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं बच्चों के प्रति. हम उनको समझें, हम उनके लिए थोड़ा अपना सपोर्ट एक्सटेंड करें, थोड़ा ट्रस्ट भी बढ़ाएं, और तो ही रिश्ते जो है वो दो ताली से बचते हैं, एक ताली से नहीं बचता है, ऐसा मेरा मानना है. और हम इसी बात के साथ आपसे फिर मिलेंगे. और आप गीतांजलि कार्यक्रम में आए, सुना, आपको आपका आने वाला सप्ताह बहुत ही खूबसूरत हो, आगे वाली जनरेशन्स आपकी बहुत ही खूबसूरत हो. धन्यवाद विवेक कुमार का, नमस्कार.
4: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक.